इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

पैर थकेंगे आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

0: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM।
1: Unstoppable with RJ Diva.

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
2: हाय, मैं हूँ आरजे ज्यूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM।

साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।
2: आज

0: पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यूस।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल।

मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं।

0: development in the drug crisis that has been plaguing for the last few years.
1: जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। Let's do it together. Let us prove it together that we are responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
2: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM and we care for you.
3: छोटा लंदन, जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
2: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
3: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
2: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
3: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
2: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
3: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन
2: रेडियो चुनार 90.4 FM.
4: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर, कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
2: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
5: Chinar beats with Harshadeva only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।
2: रेडियो चुनार।

और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 FM में हूं आपका साथी चांसेस दोस्तों मजेदार शो व्हाट्स अप लेट्स गो।

Jerry B. Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: The game is on. Tune into Radio Chuna 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chuna 90.4 FM.
1: हाय मेरी फर्स्ट नाइट परसों होगी ना शायद तो बहुत डर लगा है हे वैष्णो देवी अगर सब कुछ अच्छे से हो गया ना तो मैं विजय के साथ आपके दर्शन करने आऊँगी

0: दीदी
1: हाँ
0: भैया आपको आई लव यू कह रहे थे
1: उससे अप्पा
2: जनरेटर चलाई यार और कमाल करता था।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, चल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

मैं हूँ आरजे असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 एफएम। स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 एफएम एंड वी केयर फॉर यू।

मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड

0: करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिए। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ अवर सोसाइटी। लेट अस से हाई टू लाइफ एंड बाय टू ड्रग्स।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम

0: आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

beats with Harshadeva, only on Radio Channel 90.4 FM.

तो लग चुकी है, टेम्परेचर तो बढ़ चुका है, लेकिन इसमें भी हमें टोट का पता होता है बॉस। 90.4 रेडियो चुनार पर आगाज हो चुका है शो चुनार बीस का फुल ऑन वाइब एंड ट्राइब बीट्स आर।

Jeremy. बीट्स ऑन रिपीट शो चुनाव बीट्स आप एंजॉय कर रहे हो ऑन रेडियो चुनाव 90.4 FM. ढेर सारी बातें हो रही है, मस्ती मजाक, फन, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट के अलावा ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है. सो भी मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, घर से आई हूँ एंड मुझे पता है कि आप ज़रूर ये पूछेंगे कि आज क्या गुरु थे गए. वही मैं आपको बोलूँगी ना, ऑब्वियसली मौका दी सब कुछ बोल जाएंगे हम. और वही है कि आई एम सुपर एक्साइटेड एंड आई नो कि हर रोज़ जब कॉल्स आती है, जब आप भी कहते हैं कि हमें तो बड़ा मज़ा आता है शो में एंड स्पेशली जब आप हमारी मैसेज को कंसिडर करते हैं, हमारी रिक्वेस्ट आगे पहुँचाते हैं, वहाँ तक पहुँचाते हैं जहाँ जहाँ तक पहुँचती है रेडियो चुनाव की आवाज़. तो जल्दी कीजिए शो का हिस्सा बन जाइए और एंटरटेनमेंट के अलावा इन्फॉर्मेशन भी मैं आप तक पहुंचाती हूँ. टॉपिक होता है, सारी बातें होती है और हालात, जज्बात और हम आप सी के ख्याल. देखिए आपने चांद को पुकारा, देखिए चांद नहीं मैं दीवा आ चुकी हूँ आपके साथ शो का हिस्सा बन चुकी हूँ और फिलहाल के लिए बात बच्चों से एंजॉय कीजिए. देखिए मैं तो बोल रही हूँ और बोलूँगी बराबर 2 बजे तक और तब तक आप मेरे संग, मैं आपके संग और हम संग एंजॉय कीजिए. हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनाव 90.4 FM पर. ठीक है, इतनी हॉट है ना, गर्मी भी है और हॉट से भी हॉट है हमारी फ्रीक्वेंसी, तो ऐसा लगता है ना तो गर्मी सी हो जाती है और वो कहते हैं ना कि तापमान बढ़ जाता है. अभी तापमान बढ़ चुका है, हम हैं, आप हैं, मौका है, दस्तूर है, कहाँ जाना है. शो कैसा बन जाए आप सुन रहे हैं रेडियो चुनाव 90.4 FM.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन। Chin up, chin up, chin up, chin up, chin up.

बीट्स ऑन रिपीट शो चुनाव बीट्स आप एंजॉय कर रहे हो रेडियो चुनाव 90.4 एफएम डी सारी बातें हो रही है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल हाईवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. नेशनल हाईवे पे आपको बता दें कि जम्मू टू श्रीनगर, श्रीनगर टू जम्मू ट्रैफिक काफ़ी स्मूथली चल रहा है, बट बी केयरफुल, बी कॉशियस. डिस्ट्रप्शन लैंडस्लाइड्स की वजह से कई कई जगहों पे कभी कभार जो है गाड़ियों को रुकना पड़ता है, वेदर कंडीशंस ख़राब ही हो जाती है. और ज़रूरी है कि ओवरऑल हमें पता हो कि गाइडलाइंस क्या है. वन वे ट्रैफिक है, टू वे ट्रैफिक फ़िलहाल के लिए, आज के लिए तो टू वे ट्रैफिक है, सो आप आराम से आ सकते हैं, जा सकते हैं, अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं. But still, we have to ensure that कि weather condition सही है, अब route क्या है, ये सब हमारी जिम्मेदारी है. हमें कुछ चीज़ों का ख्याल खुद ही रखना पड़ता है. And it's not necessary हर बार हमें बताया जाए, हर बार हमें ये हो कि end moment पे अरे यार ये मैंने क्यों किया. So वो regret ना हो, regret को दूर करने के लिए हमें खुद से पहले pre-planning करनी पड़ती है. Especially इस route पे हमने बहुत ज़्यादा cautious रहना पड़ता है. और अभी के लिए अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी जो है गाड़ी चलाइएगा और आराम से चलाइए और ड्राइविंग एसओपीज़ को फॉलो कीजिए. और वही है कि गलत जगह पे ओवरटेक करेंगे फिर तो भैया जी हो जाएगी गड़बड़ी, और हम तो गड़बड़ी होने नहीं देंगे. बिकॉज व्हेन वी से वी केयर फॉर यू वी मीन इट, और हम कोई भी गड़बड़ी नहीं होने देंगे. जी हाँ भैया, कोई चलते चलते आपको ये पूछ ले कि रुक जाइए, आपने रुकना नहीं है क्योंकि ट्रैफिक पुलिस काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट रोक देगी, फिर तो पता ही है कि ये पूछेंगे कि आपने ट्रैफिक रूल का उल्लंघन किया है और आपको फाइन भरना पड़ेगा. सो ऐसी जगहों पे रुकना नहीं है, चलते रहना और चलते चलते रेडियो चुनाव 90.4 एफएम सुनना है, क्योंकि आप सुन रहे हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर, रेडियो चुनाव 90.4 एफएम.

Beats with her Jediba.

0: की खबर, आज की खबर, आज स्वागत है आज की
1: जी हाँ, स्वागत है आपका आज की ताजा ताजा न्यूज में। अरविंद बोचो तो खबर विस्तार सांत क्या चर्च ब्रेकिंग न्यूज
2: खबर।
1: तो आज की ब्रेकिंग न्यूज है कि सलमान खान कुछ ही दिन पहले दिखाई दिए थे कि मीडिया में बड़ा गुस्सा हो रहे थे, भाई जान आओ जी बाओ जी दिल से दिल मिलाओ जी। देखिए भाई जान ऐसे है ना कि बहुत ही प्यार भी करते हैं लेकिन उनका स्वैग अलग है, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है ना तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और वो भी एक रीज़न से था क्योंकि

उनके एक काफ़ी क्लोज दोस्त दुबई बेस्ड एंटरप्रेन्योर कुमुद रैना, उनकी बहुत क्लोज दोस्त थी और तब वो उनके लिए जाते थे, उन्हें चेकअप के लिए जाते थे या फिर ओवरऑल देखने जाते थे कि क्या है उनकी सिचुएशन, क्योंकि उनकी हालत थोड़ी सी ख़राब थी। और फाइनली वो अपने दोस्त से बिछड़ गए हैं कुमुद रैना, जो कि उनकी फैमिली का एक बहुत ही क्लोज हिस्सा थी, और वो यहाँ से जा चुकी है, दुनिया से जा चुकी है और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भाई जान दिखाई दी है और आँखों में आंसू भी थे। इमोशनल डे कह सकते सलमान खान के लिए था, और ओवरऑल अगर हम देखें तो फैंस बड़े दुखी हो रहे कि सलमान खान ऐसे तो नहीं अच्छे लगते, क्योंकि जब वो रोते हैं ना तो हर कोई रोता है, ऐसा लगता है कि नहीं जी ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वैसे अगर आप भी सलमान खान के फ़ैन हैं, मुझे बताइए कि आपने क्या जानकारी पाई और आपके अकॉर्डिंग क्या ये चीज़ सही है मीडिया की, फैंस की, मुझे बताइए। शो कैसा बन जाए 8999 04 पर टेक्स व्हाट्सएप कीजिए और शो चनार्वीज कैसा बन जाए।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM।

0: हाय मैं हूँ आरजे सू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।

मेट्स ऑन रिपीट शो चुनाव रिपीट सब एंजॉय कर रहे होंगे ऑन रेडियो चुनाव 90.4 FM. ढेर सारी बातें हो रही है बट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ विमेन्स सेफ्टी अवेयरनेस. वी शुड नो दैट विमेन्स सेफ्टी अवेयरनेस यानी कि हर एक औरत की सेफ्टी का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी भी और उसकी अपनी भी जिम्मेदारी है विद द नॉलेज टूल्स इंस्पेक्टर्स एंड मोर ओवर इन चीज़ों की वजह से नॉलेज की वजह से हम बहुत सारी चीज़ों को बचा सकते हैं एंड इट्स लाइक वी प्रिवेंट हरासमेंट रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली इमरजेंसीज एंड वी शुड नो दैट फिजिकल सेल्फ डिफेंस डिजिटल प्राइवेसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें सपोर्ट देती हैं हमारा लीगल राइट क्या है उन चीज़ों को फॉलो करके हम अपनी सेफ्टी का ख्याल रख सकते हैं. So why is a women's safety awareness, why it is important? Because we should trust our intuitions. Because हमें दूर से ही पता चलता है कि एक इंसान गट फीलिंग भी होती है ना कि एक इंसान का क्या मकसद है why he is talking to me और इनका मकसद क्या हो सकता है और अगर कोई सिचुएशन ऐसी आई तो हमें कैसे बिहेव करना है. फीलिंग कभी रॉन्ग आती है तो हम वो इमिडिएटली हमें पता होता है कि कैसे इस चीज़ को रेस्पॉन्ड करना अगर हम ऑलरेडी अवेयर है कि लोगों को कैसे डील करना है एंड स्टे अनप्लग्ड. एंड ये बहुत सारी जगहों पे देखा गया कि जहाँ पर बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जहाँ पे लड़कियों के साथ जाती हुई या फिर बहुत सारे ऐसे रेप केसेस जो है हमने देखे दैट्स मैक्सिमम बिकॉज ऑफ ईयरफोन्स हम लगाते हैं और हम भूल जाते हैं स्पेशली हम आइसोलेटेड एरियाज अनफेमिलियर जहाँ पर जगहें होती है उन जगहों से चलना विद प्लगिंग ईयरफोन्स आई मीन उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. सो उस चीज़ को अवॉइड करना है एंड रूटीन हमारा जो रूट होता है ना डेली रूट कभी कभार हमें उसको चेंज करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे लोग जो ना इस चीज़ पे नज़र भी रख रहे होते हैं एंड अगर हमें फीलिंग आ रही है कि दैट्स नॉट सेफ तो हमें उस जगह से ट्रैवल करना अवॉइड करना है वहाँ से जाना अवॉइड करना है सो दैट हम खुद को सेफ रखें. दीज आर दोज थिंग्स कि जो हमें खुद से करनी है जिन चीज़ों से हम खुद को बचा सकते हैं. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें एवरीडे सिचुएशनल जो अवेयरनेस है वो हमें होनी चाहिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें पता होना

चाहिए सो दैट हम खुद को बचाए, सेफ रहे, सिक्योर रहे. एंड इट्स ऑलवेज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें पता हो सिचुएशंस है वैसी कि हमने अपनी सोसाइटी के बारे में जानना है कि कुछ सही लोग हैं कुछ गलत लोग हैं. अब हम पर डिपेंड करता है अगर हमें पता है कि सही जगहें कौन सी है, सही चीज़ें जिनको अपना हम सकते हैं और अपनी सेफ्टी का ख्याल रख सकते हैं, हम उसके बारे में पता होना चाहिए. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इट, आपके हिसाब से कौन सी सी चीज़ें जो एक विमेन को करनी चाहिए सो दैट शी विल बी सेफ एंड सिक्योर. 8999904904 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए और शो का हिस्सा बन जाइए मेरे साथ.

0: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM।
1: शो चिनार बीट्स आप एंजॉय कर रहे हैं ऑन योर रेडियो चिनार 90.4 FM एंड वी आर टॉकिंग अबाउट वीमेन सेफ्टी। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट वीमेन सेफ्टी अवेयरनेस। क्या चीज़ें जो एक औरत को अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में करनी चाहिए, बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट एवरी डे सिचुएशनल अवेयरनेस, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल एंड ऑनलाइन सेफ्टी। यानी कि लोकेशंस हमें शेयर नहीं करनी होती। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें क्या होता है कि जब हम अपने लाउड वंस के साथ लोकेशन शेयर करते हैं, तो उस दौरान हमें वो लोकेशन कभी कभार काफ़ी गलत सिचुएशन में भी फंसा सकती है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। ये देखिए, कोई हमें ट्रेस मत कर रहा है, कोई ऐसा चीज़ मत है जो गलत जा रहा है हमारे फ़ोन से, या फिर हमारा जो लिमिट पब्लिक डिटेल्स होता है। यानी कि रिसेंटली एक केस ऐसा आया है कि एक इन्फ्लुएंसर थी जो अपना सोना दिखा रही थी वीडियो के थ्रू, लोगों को बता रही थी कि हमारे घर में कितना सोना है। और डिजिटल प्राइवेसी कोई नाम की चीज़ भी होती है आज हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि उस चीज़ की वजह से उनके घर में चोरी हुई और सारा सोना उनसे, जी हाँ, चोरों ने लिया और चोरी हो गई। अब देख लीजिए कि कितना सेफ है। सो सोशल मीडिया पे हमने अपने फ्रेंड्स की ज़्यादा डिटेल्स नहीं, अपने घर की डिटेल्स नहीं, अवॉइड करनी है लोकेशन रियल टाइम में। यानी मैक्सिमम टाइम हमने उन चीज़ों को अवॉइड करना है। पब्लिकली इतना अपना प्राइवेसी चीज़ ना दिखाए कि वो हमें काफ़ी ज़्यादा गलत सिचुएशन में फंसा सकता है। सो एक वेमेन के लिए स्पेशली ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, बिकॉज वी फील हमारी सेफ्टी मैटर करती है। एंड वो इंट्यूशंस, वो गट फीलिंग हमें दूर से आती है कि एक इंसान कैसा है, सिचुएशन कैसी है, क्या रॉन्ग फीलिंग्स है और कौन सी चीज़ें ऐसी है जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए और कौन सी चीज़ें ऐसी है कि हमने खुद को सेफ रखना चाहिए। सो वी आर टॉकिंग अबाउट इट एंड मैं अकेली नहीं हूँ, आप भी है। आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं। 8899-04904 आप टेक्स व्हाट्सएप करके शो में शामिल हो सकते हैं, बता सकते हैं कि एक औरत की सेफ्टी के लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें करना चाहिए क्या नहीं। आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं। आप सुन रहे हैं हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनाव 90.4 FM। ये है हर दिल की धड़कन।

Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: मैं हूं आरजे ज़ियूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
2: हाय, मैं हूँ आरजे ज़ियूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM।

साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM। रेडियो गर्ल्स फाइनली स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर मैं अकेले नहीं होती हूँ, मैं और अश्राम सटी सारी बातें करते हैं हमेशा की तरह, लाइक ऑलवेज। आप देखिए इतनी बातें हो ही गई है, तो मेरी को होस्ट का भी स्वागत कीजिए। स्वागत है आपका अश्राम।
1: देखिए अब मैं तो बोल ही नहीं सकती कि स्वागत नहीं करोगे हमारा, क्योंकि हमारा स्वागत बहुत ही जोश और खरोश से हो चुका है। थैंक यू दीवा, थैंक यू दीवा।
0: देखिए इतना थैंक यू आपको करने की जरूरत भी नहीं है, आज आप ही की बात हो रही है, और क्योंकि एक खास टॉपिक है।
1: बिल्कुल,
0: अब आप ही को बता दूं मैं कि आपकी सबसे फेवरेट चीज है, बताइए क्या चीज हो रही है आज।
1: मेरी तो बहुत ही फेवरेट चीज है, आप भी एक

0: फेवरेट चीज है हमारी, बट एक
1: ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया.
0: बट देखिए, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, हमेशा रेडियो गर्ल्स का जो टॉपिक रहता है काफी डिफरेंट, काफी फन और काफी रिलेटेबल होता है. और आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करें जो मेरी फेवरेट है ही, दीवा की भी फेवरेट है, आपकी भी होगी, सबकी है.
1: अब देखिए कि इससे तो मर्द हजरात बिल्कुल क्या बोलते हैं उसकी, हमारा सहमति रखेंगे कि आज बात हो रही है शॉपिंग की, और शॉपिंग में लेडीज का नाम सबसे पहले आता है.
0: बिल्कुल. और ऐसा नहीं है कि हमारे जो लाइक फादर हैं, ब्रदर हैं, हस्बैंड हैं, ये सारे शॉपिंग नहीं करते, करते हैं, बट इतना डिटेलिंग से शॉपिंग.
1: और मुझे लगता है कि जो बोलते ना कि लड़कियों का मूड सबसे अच्छा होता है, अरे भाई क्यों ना हो, नए सजना सवरना किसको नहीं पसंद, स्पेशली लड़कियों के लिए नया दिखना, नई चीजें, ट्रेंड को फॉलो करना. अगर आपको ऐसा लगता है लड़कियां एक्सपेंसिव, नो, पीपल गर्ल्स आर लाइक दैट, दे आर एक्सपेंसिव. और आपको समझना है कि वो उनको अच्छा लगता है और उनको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है. और सच में 360 में कुछ भी नहीं आता है, ये आप समझ लीजिए.
0: बिल्कुल. एंड आई नो दैट रेफरेंस, एंड मुझे लगता है कि मेरे अलावा सारे लोग ये रेफरेंस जानते हैं कि 370 रुपए में क्या ही आता है ब्रो.
1: देखिए, लिप पिन नहीं आता है, ऐसा ऐसा समझना पड़ेगा. और हर कोई लड़की, मैं तो बोल रही हूँ इसमें हर कोई सहमति रख रहा है, अभी की सोशल मीडिया की बात नहीं है, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर हम देखें तो आज चीजें एक्सपेंसिव है, आज चीजें हैं
0: बिल्कुल.
1: और हर दिन शॉपिंग करना, शॉपिंग से क्या कुछ होता है, फायदे भी है इसके. अब लोग कहेंगे अरे ये क्या चीज है,
0: इसमें क्या फायदा है,
1: बट ट्रस्ट मी है इसका बहुत सारे फायदे इसके. अब इमोशनली भी कोई चीज, इमोशन कोई चीज होता है.
0: बिल्कुल. एंड ऑनेस्टली इसके अलावा भी शॉपिंग के बहुत सारे नाम है, जैसे कि रिटेल थेरेपी बोला जाता है कि भाई ये एक किस्म की थेरेपी है कि आप कोई नई चीज लाते हैं. हमें बड़ा अच्छा लगता है अनबॉक्सिंग करते हुए, लोगों को देखना, खुद अनबॉक्स करना.
1: आज तो वैसे ऐसा डिजिटल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया है तो दिखा दो भाई, स्नैप्स के लिए इम्पोर्टेंट है.
0: बिल्कुल.
1: आपको दिखाना है लोगों को कि क्या चीजें है, ये लाया है मैंने, देखिए ट्रेंड है और मैंने भी इस चीज को खरीदा है, वो अलग ही फीलिंग होती है. एंड मुझे लगता है फाइनली असरा ने आपको टॉपिक भी बता कि विमेन एंड शॉपिंग थेरेपी हमारा आज का टॉपिक, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट शॉपिंग. आप किसे पीछे हट सकते हैं, लेडीज आ जाइए
0: जल्दी से, 8899904904 इज नंबर, जल्दी से बताइए लास्ट ऐसी क्या चीज आपने शॉप की है, हमें बताइए क्या हम भी अपने लिए खरीद सकते हैं.
1: बिल्कुल, आपकी राय बहुत ही ज्यादा मैटर करती है. 8899904904 टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शो रेडियो गर्ल्स का हिस्सा बन जाइए.

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM।
2: करो हंगामा आजे असरा के साथ
3: ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM।

0: शो रेडियो गर्ल्स आप एंजॉय कर रहे हो ऑन योर रेडियो चुनाव 90.4 FM. ढेर सारी बातें हो रही है एंड मी एंड नसरा टॉकिंग अबाउट शॉपिंग बिकॉज व्हाई वी लव शॉपिंग. क्यों शॉपिंग पसंद है असरा, क्या लगता है आपको?
1: इसलिए पसंद है क्योंकि नई चीज़ें मिलती हैं
0: कुछ और ऐड होता है हमारे वार्डरोब में. और
1: बिल्कुल, और सिर्फ वार्डरोब की बात नहीं है, चाहे वो अभी तो लड़कियां हर जगह है भाई, टेक्नोलॉजी से लेकर चाहे हम टेक गैजेट्स हैं वहां से लेकर गर्ली पॉप चीजों तक, लाइक हर कोई चीज खरीदने में एक नया ही
0: मजा है. एंड ऑनेस्टली अगर वी सी हर एक चीज को मिलाकर लड़कियों को अच्छा दिखना बहुत ही अच्छा लगता है. इट्स नॉट नेसेसरी वो किसी को दिखा रही होती है.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: समटाइम्स दे फील सो कॉन्फिडेंट अच्छे अच्छे कपड़ों में, अच्छे जो नए नए ट्रेंड के साथ, उनको लगता है कि मॉडर्नाइजेशन के साथ वो लोग भी आगे बढ़ रही है.
1: बिल्कुल.
0: इट्स नॉट अबाउट दे आर शोइंग समबडी दैट कि हम किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं. नो, इट्स नॉट अबाउट दैट. इट्स अबाउट
1: सेल्फ केयर.
0: यस, इट्स अबाउट सेल्फ केयर, इट्स अबाउट कॉन्फिडेंस.
1: बिल्कुल.
0: आप पे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं भाई मैं तो बड़ा अच्छा दिख रहा
1: हूं. अच्छा दिख रहा हूं. मतलब वो बोलते हैं एकदम फिट, एकदम जब हम आईने में देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है. वी लुक एट आवरसेल्व्स एंड वी आर लाइक या एक. और कहा भी जाता है ऐसा दीबा कि जब तक आप सही से ड्रेस ना कर रहे हैं, अंटिल यू डोंट फील comfortable. Yes. What you're wearing, what you're doing, आपकी accessories क्या है, add to your personality. It definitely adds to your personality.
0: Yes, I believe कि उससे हमारी personality काफी develop होती है.
1: बिल्कुल.
0: और हम कैसे बात करते हैं हमारे ड्रेसिंग का उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. सो जब भी हमें कहीं जाना होता है हम हमेशा कहते हैं कि काफ़ी प्रेजेंटेबल दिखना है. और ये सिर्फ बातों से ही नहीं, ये कपड़ों से भी आ जाता है.
1: बिल्कुल, बिल्कुल.
0: कि वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम सही हैं, हमारे कपड़े सही हैं, हमारा माइंड सही है. सो वी आर लाइक फ्री टू टॉक, हम कुछ भी बोल सकते हैं.
1: अलग कॉन्फिडेंस मिलता है. और दीवा, हैव यू लिसन टू दिस सेइंग है कश्मीरी में कि यानी कि जो कपड़े होते हैं अच्छी आजाद. इसीलिए अगर इंसान किसी चीज में इन्वेस्ट करे ना करे, अपने आप पे इन्वेस्ट करना बहुत बड़ी चीज है. और शॉपिंग इज वन ऑफ द वे जहां पे आप सही से खर्च करके आप अपने लिए ऐसी चीजें ला सकते हैं जो सेल्फ ग्रूमिंग, सेल्फ केयर के लिए हो.
0: बिल्कुल. एंड मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है कि आपने कश्मीरी में बोला कि हमारे कपड़े बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए नेसेसरी है.
1: बिल्कुल, बिल्कुल.
0: या फिर कश्मीरी में देखे तो हमेशा शिवाना कि यम स्नो पोशाक छ आसान, यम तम पलव छ आसान. एक इंसान तो शूब नहीं, नहीं.
1: बिल्कुल.
0: ये कैसा है,
1: मैंने भी ऐसा सुना.
0: ये हमारी सफाई से लेकर कपड़े कैसे हैं. सो प्रेजेंटेबल दिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स नॉट अबाउट कि नए कपड़े, शॉपिंग, वेस्टेज. कभी कभार हमें अच्छा खुद के लिए भी देखना होता है.
1: हमारे
0: सेल्फ एस्टीम के लिए हमें अच्छा लगता है, खुद को ट्रीट करना गुड है. कपड़ों से आता है, फूड से आता है, अच्छी अच्छी चीजों से आता है. सो वो चीजें बहुत जरूरी है.
1: और दीबा इतने इमोशन से कह रही है ना कि खुद के लिए करना है, जरूरी करना है. तो बताइए दीबा, आपने अभी बहुत सारे ट्रेंड्स होते हैं, तो आपने अभी कौन सा ऐसा ट्रेंड है जो आपको बहुत पसंद आया?
0: देखिए, मैंने इट्स नॉट, मैं नहीं कह सकती कि ट्रेंड है वो, कहते ना कि एक्सीडेंटली मैं वहां पे फंस गई हूँ. सो रिसेंटली आई वेंट फॉर हेयर कट ना. मैं तो गई थी कुछ और करने के लिए, कुछ और करके आ गई. सो एक्सीडेंटली वो चीज हो गई. बट एक्चुअली दैट्स लुकिंग सो नाइस. बैंग्स काफी अलग दिख रहे हैं. आई मीन जो लोग सोशल मीडिया पे होंगे
1: उन्हें तो पता, अभी लिसनर्स को नहीं पता, बट मुझे जरूर पता है.
0: सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक लुक चेंज हो जाता है जब आप हेयर कट के लिए जाते हैं, हेड वॉश के लिए जाते हो, अपना सेल्फ केयर करते हो, तो एक वो अलग ही, मुझे लगा कि एक अलग चीज़ में मैं घुस गई हूँ. मैं सीधा इंडिया से कोरिया चली हूँ. तो मुझे लगता है कि हर एक हेयर स्टाइल हो, कपड़े हो, हर एक लुक के साथ हमारी नई पर्सनालिटी दिखती है. हम कैसे खुद को प्रेजेंटेबल बनाते हैं नए कपड़ों के साथ. और शॉपिंग क्यों इम्पोर्टेंट हमारी थेरेपी के लिए, जैसे कि असरा ने बोला. सो हर चीज़ ज़रूरी है ज़िंदगी में.
1: बिल्कुल. और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम दुखी होते हैं या हमें लाइफ डाउनहिल पे जा रही होती है या कुछ भी ऐसा अनप्लेजेंट होता है, तो शॉपिंग से कुछ ना कुछ तो असर पड़ता है.
0: और वो तो है, वो तो है. आप मुझे बताइए, असरा की तरह से असरा ने मुझे पूछा कि मुझे क्या नया है, क्या ट्रेंड मुझे अच्छा लगा है. आप कौन से ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, क्या चीज़ चल रही है? अभी भी फर्शी शलवार पे कुछ अलग ही हो चुका है. सो मुझे बताइए एनी बड़ी, यानी कि लड़कों के, लड़कियों के लिए क्या चीज़ें अभी नई हो रही है, हमें बताइए. शो का हिस्सा बन जाए, कैसे बन सकते हैं?
1: बस 8899249904 इज नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप, और बन सकते हैं इस हॉट फ्रीक्वेंसी का हिस्सा.
0: बिल्कुल. तो जल्दी से शो का हिस्सा बन जाए.

Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।

जरूर बोलेंगे, क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर, एवरी वेंसडे एंड सैटरडे, रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM.

0: मैं तो कहती हूँ, बट क्या करूँ, असरा ऐसे घूर घूर के देख रही है ना, बोल रही है कि भैया जी शो हंगामा ऑलरेडी लेट हो चुका है, आप और करेंगे तो कैसे चलेगा भैया?
1: अरे नहीं, आपका हम सह लेंगे थोड़ा सा।
0: देखिए इतना प्यार जो मिलता है ना, जैसे हम आपसी में प्यार करते हैं, ऐसे आप भी यूं ही प्यार देते रहे, यूं ही हम आएंगे आपसे फिर से बातें करेंगे। फिलहाल के लिए शो रेडियो गर्ल्स का टाइम खत्म हो चुका है, असरा यही पे आप शो हंगामा जी भर के ड्रामा इंजॉय करेंगे, बहुत सारी यानी मिर्ची हर चीज स्पाइसेस तड़का हर चीज मिलेगा आपको शो हंगामा में। फिलहाल मैं तो जा रही हूँ ख्याल रखिए, और हम सैटरडे को शो रेडियो गर्ल्स लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज़। आप सुन रहे हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हाय मैं हूँ अस्ता और शो शुरू हो चुका है हंगामा द गेस
1: की जो खबर है, जो खुशबू है, जो पहले से शुरू हो चुकी थी क्योंकि रेडियो गर्ल्स था और उसके बाद शो हंगामा होता है। और ऑलरेडी आरजे दीपा ने मुझे बता दिया था कि मुझे

गाना है। देखिए मैं थोड़ी सी भुलक्कड़ हूँ और वैसे ही आरजी दीभा भी भुलक्कड़ है कि मैं शो कर रही हूँ, बट बीच में एंटर करना चाहती हैं, तो देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। शो शुरू हो चुका है, हंगामा, ड्रामा, एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, क्या बजिंग है और लाइफ का ऐसा फिलोसफिकल टच कहीं और नहीं मिलता, और आते आते ही प्ले होता है कुछ खास कुछ क्रेजी।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। और हंगामा पे अभी सिर्फ ड्रामा का टाइम नहीं, बल्कि फ्रेश क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे, क्या ट्रेंडिंग है, रील्स कौन सी अपलोड हो रही हैं, लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं, रीपोस्ट कर रहे हैं, लिप सिंकिंग डांस रील्स और कौन से मीम्स लोग रीपोस्ट कर रहे हैं। और आज एक बहुत ही खूबसूरत रील जो लोग देख रहे हैं एंड लिटरली इट हैज 10 million views एंड 2 million likes on it एंड ऑनेस्टली

0: आर जस्ट नंबर्स, बट जो फीलिंग है उस रील की वो ये है कि इतने बड़े डायरेक्टर पटना की गलियों में क्या कर रहे हैं। यानी कि मैं बात कर रही हूँ इम्तियाज अली, जो वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा राइट नाउ, वो पटना की गलियों में घूम रहे थे एंड अ फैन उन्हें दिख गए एंड ही हाउ ही ग्रीटेड द फैन, दैट वाज द पीक मोमेंट ऑफ इट। और इम्तियाज अली इज नोन फॉर हिज वेरी डाउन टू अर्थ बिहेवियर एंड सबसे बड़ी बात जो उनकी मूवीज होती हैं और उनकी लेटेस्ट रिलीज मूवीज जो है मैं वापस आऊँगा, दिस इज गोइंग टू बी अ हिट एज ऑल ऑलवेज, चाहे लोग उस पॉइंट पे जब बॉक्स ऑफिस पे रिलीज होती है कोई मूवी उधर पे रियलाइज करें या कुछ समय बाद, जैसा कि लैला मजनू पे रियलाइज किया गया कि जब वो रिलीज हुई थी तब उतना टर्नओवर नहीं था, बट कुछ समय बाद लोगों को समझ आया कि इम्तियाज अली लोगों से क्या कहना चाहते हैं।
1: लाई मस्करा लकिया निभाई रखना मेरी जान मेरी हाँ।
0: देखिए मेरी तो हाँ है और आपकी भी होनी चाहिए। 8899-9049-04 इज नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप पर बताइए कि आपकी कौन सी फेवरेट मूवी है इम्तियाज अली की। एंड आई होप एंड आई थिंक कि इम्तियाज अली की इतनी सारी मूवीज हैं, कोई ना कोई तो आपकी फेवरेट होगी, बिकॉज ही इज नोन फॉर कल्ट क्लासिक फेवरेट्स। मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 FM, ये है हर दिल की धड़कन।

0: ड्रामा आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। और जैसा कि अभी वक्त है कि मैं आप तक पहुंचाऊं अपडेट्स एंड स्पेसिफिकली रेलवे अपडेट। और आज की अपडेट यही है कि हर कोई जो ट्रेन शेड्यूल्ड है दैट इज एज पर द समर टाइम टेबल एंड यू कैन अवेल द टाइमिंग्स एंड ट्रेन्स बिटवीन स्टेशंस, लाइव लोकेशंस ऑफ द ट्रेन। कौन सी ट्रेन अभी स्पेसिफिकली कहाँ है वो सब ऑफिशियल इंडियन रेलवे ऐप से आपको पता चल सकता है, दैट इज रेल वन। इसके अलावा एडवाइजरी हमेशा यही रहती है कि आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेशंस पर 10-15 मिनट पहले पहुंचे सो दैट आपके प्लान में कोई डिले या कुछ अनहोनी ना हो, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप रिलैक्स्ड होके जाएं, क्योंकि यू नेवर नो कि अगर ट्रेन कितने टाइम तक एक प्लेटफॉर्म पर रुकेगी। सो इट्स बेटर कि आप अपने प्रिकॉशंस पहले से लें। मैं हूं असरा, सुनते रहिए रेडियो चुनार 90.4 एफएम, ये है हर दिल की धड़कन।

हाय मैं हूँ अस्टा और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 FM. ये है हर दिल की धड़कन और शो हंगामा का हमेशा ही एक स्पेसिफिक टॉपिक रहता है, खास टॉपिक होता है, हर दिन एक डिफरेंट टॉपिक होता है. और आज एक ऐसी चीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जो एक्चुअली अभी करंट सिचुएशन है. लोग इसके बारे में ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं और मुझे लगा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम भी इस बारे में बात करें. दैट इज नशा मुक्त कैंपेन्स. जो भी अभी कैंपेन्स जम्मू एंड कश्मीर में हो रहे हैं, इवन दो देर आर अ लॉट ऑफ कैंपेन्स जो एक्चुअली पूरे इंडिया में हो रहे हैं एंड लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ड्रग अब्यूज़ के चलते अपनी ज़िंदगी खो देते हैं या अपनी लाइफ का एक जो सेटल्ड वो लाइफ चाहता है एक इंसान उससे कोसों दूर इन सब चीज़ों की वजह से वो दूर चले जाते, चाहे वो अपनी फैमिली से दूर हो, अपने करियर से दूर हो, अपने प्यारों से दूर हो. और आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली नशा मुक्त जो अभियान है, जो कैंपेन चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें हुई भी हैं, बहुत सारी कैंपेन्स हुई हैं, रैलीज हुए हैं, इनके बारे में क्या फैक्ट्स हैं और क्या अभी क्रेडेंशियल्स हैं. इसके अलावा इस बारे में भी बात करेंगे कि कौन से ऐसे स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं ऑलरेडी जिसकी वजह से कुछ ना कुछ सोसाइटी तो बेहतर हो रही है. सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM. ये है हर दिल की धड़कन.

अब सब बोलेंगे बोलेंगे जरूर बोलेंगे, क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर एवरी वेंसडे एंड सैटरडे। रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

बात जो बाकी है वो तो अभी जारी ही रहेगी बराबर चार तक. और दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर दैट यू कैन बी द पार्ट ऑफ द शो. और जैसे कि आज हम नशा मुक्त कैंपेन के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है और भी है बहुत कुछ जिसके बारे में बात होगी. आप भी बन जाइए शो का हिस्सा. 8899904904 इज नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स, व्हाट्सएप और बन सकते हैं इस हॉटेस्ट फ्रिक्वेंसी का हिस्सा. मैं वस्त्र शो है हंगामा, मैं बस यूं कही और यूं वापस आई.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

वेलकम बैक टू शो हंगामा, जो कि बराबर ढाई से चार तक चला आज, क्योंकि देखिए वेंसडे और सैटरडे को स्पेशल शो होता है रेडियो गर्ल्स, जहां मैं और दीवा मिल के बात करते हैं। और अभी के लिए तो शो ख़त्म हो गया, पर इस बात का वादा देती हूँ कि कल वापस आऊँगी करने आप सबको एंटरटेन, ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM। और ज़रूरी है कि मैं आपको ये याद दिलाऊं कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रेजी करते रहिए, क्योंकि क्रेजी करने से आपकी लाइफ में बहुत ही फन और एंटरटेनिंग मेमोरीज बनती हैं ज़रूर। मैं वास्ता सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 FM। ये था शो हंगामा, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, ओवर एंड

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chunar 90.4 FM and we care for you.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Beats with Archie Diva, only on Radio Channel 90.4 FM.

Chinar Beats with Dhar Chediba, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: कोक स्टूडियो भारत सब्सक्राइब नाउ।
1: खादीनो हजरत मुख्तसर बात साहिबे मसनद सुनो।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशन के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: दिल को
4: करार आ जाए
3: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
3: दबी यादें महक जाए
4: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
4: सुनिए सुहानी शाम
3: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
4: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाए।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को करार आ जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो सिनार
0: 90.4 FM।

0: दिल को करार आ जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: तभी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4
1: FM।
0: स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव

0: जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: तभी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
2: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खा

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: नाचण दे।
1: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: तुझे याद है ना आज पापा तुझसे बात करने वाले हैं?
2: उन्हीं से मिलने की तैयारी कर रहा हूँ।
1: सलून में?
2: लड़कों की खूबसूरती सलूनों में नहीं, बैंकों में निखरती है। अगर आज लोन पास हो गया ना, घर और घरवाली एक साथ फिक्स हो जाएंगे।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

अब मैं जो कहने जा रहा हूँ ना किसी ने कहा है ना किसी ने सुना है, मुलायजा फरमाइए हुजूर।

0: दिल को करार आ जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
0: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।
2: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि

0: वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
2: दिल को
3: करार आ जाए
2: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
2: दबी यादें महक जाए
3: जब भी आए
2: सुहानी शाम।
3: सुनिए सुहानी शाम
2: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
3: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: तभी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

सबको तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

इधर चैन आराम राति सुबह दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं देखो ना दर्द हिस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं मगर

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो एक बात, एक बात
2: आप वन
1: लेकिन एक बात

0: बता दूं? वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली,
1: खेलेंगे हम।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कहिए ना।

0: ओ सवरिया ओए होए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ।

0: चारूंगी शोर, बचाओ ओ मुए, ओ मुर्गे, ओ कौवे, पीछे पीछे आते हो क्या दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़। ओ गोरी, ओ नटखट, ओ खटपट, ओ पनघट, ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
0: तोरे नैना, ओ मीठे बैना, ओ तोरे नैना, हाय हाय मीठे बैना, हाय।

माशा अल्लाह कहना तो माना, बन गया बिगड़ा जमाना। माशा अल्लाह कहना तो माना,

0: यतन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी हम थे

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

धीरे मैंने खींचा, आ हा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा, आ हा हा। हम थे वो थी और हमार रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: यूं ही साथी
1: है बंदी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की
0: मुश्किल

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

0: दिल एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा।
1: हा हा हा छोड़ दो अचल, जमाना क्या कहेगा।
0: हा हा हा इन अदाओं का, जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।
1: जमाना क्या कहेगा,
0: दीवाना क्या कहेगा।

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।